0: 的信使总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चपलदान के विवाह गुहार हैं नहायत ले आज हमें से किधर वो सुख मस्माई दिखा रहे थे इसका
0: हे 氏下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓墨
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 中国这是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛但我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息

0: 春的信使总抢先一步萌芽。
1: 说了话哦，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप नहीं के व्यवहार गुहार हैं यहाँ यात्री दर आज हम इसके लिए वो सुबह मस्माई दिखा रहे हैं जिसका
0: 何时下的狂歌，日夜不息雕琢山河。
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分。
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。